स्वस्थता खाने शुद्ध खाने उमाले को खाने तातो तातो खाने सफल ताजा खाने बासी शरीर को नखाने फल फूल खाना खाने पानी में राम पखाले खाने खाने पानी में खानु पर्यो पानी में पखाल्नु पर्यो एकछिन पानी में खाना राम्रोसँग

0: गरे अन्न पीडादी साग सब्जी फल फ्रुट सहित पोषण पूरक खानाले बच्चाहरूलाई तन्दुरुस्त बनाए। पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म स्तर पारित गरे।
1: रेडियो पूर्वाधार एफएम द्वारा सबै कुरा जाने सन्देश।

सुनौ अनि खुलेर कुरा गरौं। खुलेर सुनौ, खुलेर सुनौ। BBC Media Action.

शादी करना बड़ा मजा है। उसका खबर मिला नंबर वन स्वयं शादी करना तैयार करो। तो और गहना भी बनी खाई। मनोजी जी

सेवा भास्करी नगर पालिका का नगर प्रमुख इंदिरा चौधरी उपभोक्ता समिति का प्रमुख समस्या समाधान आपसी छलफल का माध्यम से जो संपूर्ण समस्या समाधान करे सेवा प्रतिनिधि दिवस का अवसर में सब उपभोक्ता समिति लगायत सरकार शुभकामना व्यक्त करते कार्यक्रम मुख्य रूपान केन्द्र प्राध्यक्ष मोहम्मद कर्खा सामुदायिक दल उपभोक्ता समूह कारण विश्व में नेपालको पहिचान बन्न पुगेकोबाट दिएको अगुवाईमा नेपालमा समावेशिताका शुरूआत दावी समीकरण र उहाँ समृद्धि आर्थिक रूपमा प्रतिबद्ध

0: నిమిషాల కార్యక్రమ ఉపాధ్యుభానుడి ప్రదేశ సదస్య పెంటు శాస్త్రం జిల్లా సదస్యమని రామాచార్యుల అంతర్క్రియ కార్యక్రమ సాముదాయిక దళపత సమ్మాత పదాధికారిగా మన కార్యకర్తలు ఈ సమస్య సమాధాన నగరపాలిక సమన్వయపాలిక నగర కార్యక్రమ సంచాల మహాసచివ్ టేక్ రాష్ట్ర మిల్సేనా క్లబ్ సహసచివ్ టేక్ రాష్ట్ర మిల్సేనా తరగతి సదస్య పృథ్వరాజ్ పౌరుల్ స్వాగత మంతవ్య బాస్మతి నగరపాలిక వార్డ్ నంబర్ 4 మతహాకర్ 28 వర్షీయ రాజ్కుమార్ థారు ఏక్ మహీనా సే ధ్యాస్ హోనే సే బేపత్తా పరివార్ హై కాదిరామ్ థారు ఓ సీతా జానకీ థారు ఓ సావర్ రాజ్కుమార్ తైరప్ ప్రసాద్ 24 ఘంటె దిన్ కా సరమస్ సే కేంద్ర డిజనా ఖాస్ లైన్ కా దేఖాని కరత్ పరివార్ జాన్ తైకిల్ బాచా వార్ పరివార్ పరివార్ కార్యాలయ మోతీపూర్
1: సేవ సంచాలక
0: पेमेंट चलता है और के अस्पताल का समस्या में पेमेंट चलता है और के अस्पताल का प्रधान नंबर 12 में संपर्क करें का आपका नाम दर्ज कराए वो सेवा दे सकना और के अस्पताल में और के अस्पताल की सूचना प्रकाशन करता के अस्पताल की सेवा समिति संख्या का लाभ के हक समिति संख्या का लाभ के हक मिलकोर से संबंधित सबको दरमियान 66 संपर्क कर बल्द अस्पताल राजी करवा आत्मराष्ट्रीय समाचार बताए वो अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिमा के मुलुक का आर्थिक रूपांतरण पर राज्य सरकार और निजी क्षेत्र बीच पूर्व साझेदारी की प्रमाण पत्र लगाकर नेपाल का देश भरा बहुराष्ट्रीय करदाता कंपनी का प्रतिनिधि समूह आयोजित छलफल में बोलते अर्थमंत्री वर्ग ने निजी क्षेत्र का सफलता हो नेपाल का आर्थिक सफलता का मुख्य आधार मुलुक का आर्थिक विकास को एक मंत्रालय में नीति का क्षेत्र प्रयास में से केवल संभव नहीं हुआ उल्लेख करते हुए यह प्रलाप हेलो ऑफ द नेपाल हेलो ऑफ द नेशन एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण आवश्यक और स्पष्ट प्रभाव सरकार निजी क्षेत्र होना संख्या का दृष्टि लेने को का विकास का अभिन्न साझेदार के रूप में हेरना वहां कहा रहना उद्योग कमाईना नाफाले लगानी पड़ेगा वो उन्हीं में से सृजना होने रोजगारी को आमदानी ले अंतर राज्य का राजस्व में योगदान पुगना था कि वहाँ सरकार और निजी क्षेत्र का संबद्ध परिपूरक द्वारा उल्लेख करवाता वैध रूप में कई किलत लगानी वो आर्जन कई किलत मुनाफा व सुरक्षा पर पूर्ण जिम्मेवारी सरकार ने प्रतिबद्धता वहाँ व्यक्त करवाता वहाँ वापसी में अर्थमंत्री उत्तरी पर नेपाल में थप लगानी कर उद्योग विस्तार कर और लोगों पर विधि विधि रोजगारी का अवसर सृजना कर आज करवाता सरकार पर्याप्त समस्या न सचे की लगानी में की वातावरण बनाए विशेष रूप से सुविधा समेत घोषणा कर वहाँ इस मुलाकात का निर्माण कर राष्ट्रीय समाचार संघ हमारा संदेश का समय उड़ाई लगल बा हमारा संदेश रहना से पहला मुख्य मुख्य संदेश फेंक गया बांसवाड़ी नगर पालिका में सामुदायिक वन दिवस 2082 के अवसर में सरकार द्वारा अंतर क्रिया रेखा दिवस मना गया था अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिमा के मुलुक का आर्थिक रूपांतरण पर सरकार और निजी क्षेत्र बीच बलव साझेदारी होना बतौने अब हमारा संदेश प्रह कल बिहार 7 बजे नेपाली भाषा हमारा संदेश लेखाई बाटी तब समग्र समाचार पक्ष भाषा कुशल यहाँ पर प्राप्तिक संक्रिया कवि शंकर कैमरा मारा में संग मैं हूँ कुमार के बिता रेडियो प्रभाव सुनते रहिए जय गोपाला।

0: टाइफून का कारण भारी वर्षा भएको छ। वहीं यह क्षेत्र को यातायात समेत प्रभावित भएको छ। सोमवार मात्रै शांघाई में करीब 1,000 उड़ान रद्द भए। यूबीबीसी नेपाली सेवा हो।
1: स्वागत छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र शाह भए

तथा समस्तीपुर जनपद की सुविधा गौतम ने प्रस्तावित व्यवस्था में आगामी तीन महीने में मस्जिद स्थापित करने को बताया। श्री विधायक की संशोधन प्रस्ताव करते आगे सांसद हुए बहुत घंटा को समय पाने। सुनो एक रिपोर्ट। गृह मंत्री गौतम ऐसा बताने के लिए पदाधिकारी होता